जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

कि तू ही तो है, काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना, आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को बस एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है विभिन्न सच देवा की आवाज में, ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

बस में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मधुस्मिता की आवाज में ये सुंदर भजन प्रोग्राम में सुनते ही रहना। रेडियो एसबीएस के जरिए जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर साहब है जनाब, सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी खास तौर पर कुमार सानू और अलका जी की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा माता जी का भजन कुमार सानू और अलका जी के आवास में बस पेश की गए। चले एक और सुंदर सा भजन मिलकर सुनते हैं आज की सुबह की प्रोग्राम में।

की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, ये सुंदर सा भजन होगा।

अभी आपने सुना। सुनो वालों, अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सेन रामबरन की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

जा रहा है, एक सुंदर सा माता जी का भजन पेश किया जा रहा है। और इस भजन के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुनने वालों, चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आज की प्रोग्राम में एक सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन बस पेश किया जाएगा। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की। सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रय बैठे

बाबुल सुब्रियो और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 8:00 प्रोग्राम में 8 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज बुधवार का दिन 23 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वोस्तक 23 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अलका और कुमार सानू जी की आवाज में।

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को वेलकम शुभिंग पेश किया जा रहा है अनहेल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है गाना का बोल है मोहब्बत हो ना जाए

बीच गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

सूरज जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। इतनी सी बात है गाना कबूल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म प्रेम अगन के बाद फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, यहाँ से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। इस वक्त 9:03 व्यतीत हो चुका है, मतलब होते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम यहाँ से बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो ले चलते हैं पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आज उड़ता हुआ एक पंछी।

0: बहारों
1: श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में प्रसून मुखर्जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है फिल्म 20 साल बाद।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म 20 साल बाद उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश की गए खासतौर पर 1950 का फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम निराला, उसी फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत गाना सुना लता जी की आवाज में। चले किशोर कुमार की ओर और अब की बार श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा, मगर ये कहूंगा
1: क्या
0: यही है यही तो है वो
2: इना मीना डिका,
1: इना मीना डिका,
2: एडा एडा मनिका,
1: एडा एडा मनिका,
2: अमा का ना का ना का,
1: अमा का ना का ना का, अच्छी कपी करी का।
3: किशोर कुमार की आवाज में श्री रामचंद्र का संगीत पर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार के बाद चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

उन्नीस सौ इकसठ का फिल्म, फिल्म का नाम घराना। उसी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-266-6611। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। उसी सुनने वालों, बस रोजाना मोबाइल फोन टैबलेट के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से किशोर कुमार की ओर, साथ में होगा आपकी बार आशा भोसले और फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम जाग उठा इंसान। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और लता के बाद हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, और गाना का बोल है सांसों में कभी। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अबकी बार फिल्म दारिंदा, उसी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में।

आईटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था दारिंदा। दारिंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की ओर।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। चोर मचाए शोर फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश एन कंचन आपको ले चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर। मुकेश और कंचन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

जो आज के प्रोग्राम में पेश किए गए किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में, किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आपके बारे

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना पेश किया।

उड़ता हुआ, आज उड़ता हुआ एक पंछी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार

आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है, दिल ही तो है फिल्म का नाम, दिल ही तो है फिल्म का नाम। मुकेश जी की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आइडो फिल्म दिल ही तो है गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

गाना जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में, किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश की गई है।

रेडियो SBS की किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Sunnevallo Thames Drive 237, शहर उत्तरा से ये प्रोग्राम आप सभी सुनवालो की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवंड फुल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्राचीन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: संडे 15 नवंबर संडे 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज टू जनरेशंस एन पोडियम एन अनवर्गेटलिके अवंड मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events Proudly Presents Baremia Chote Mia live in concert Udi.

0: प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी है। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबीर कुमार एन अलका याग्निक प्रोग्राम में

0: और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना फिल्म का नाम कसम से। रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश
1: किया है।
0: चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

इसमें ज्यादा वस्त्रों का में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड KK प्रोग्राम में।

आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए फरमाइश से हुआ तमाम खबरें तमाम रिक्लाम मृत्यु समाचार के लिए 03-22-65-65-60 टेलीफोन नंबर है।

करते हैं अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है लागी ना छूते जेंटलमैन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

सिंह अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया जी की ओर। श्रेया जी की आवाज में अब की बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

तरीही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में, सपने साजन की फिल्म का नाम।

की गई। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

ये तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना जो आपकी बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

सानुआर अलका किया बांसमी गाना बीच की गई फिल्म का नाम शरीफ तुम सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL अजय और शरिया प्रोग्राम में

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

दिवस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

ज्ञानवश प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुख्य इसके बाद चले आज के प्रोग्राम में तलत जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में फिल्म पतिता का गीत पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की ओर पहचान फिल्म का गीत पेश होगा। 1970 का फिल्म, फिल्म का नाम पहचान, मुकेश और लता मंगेशकर प्रोग्राम में। और गाना का बोल है कल दिल के बाद बस आज मौका है।

फिल्म पहचान का गीत पेश किए गए मुकेश और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मुकेश और लता जी की आवाज में, फिर से प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म प्रेम कहानी, उसी फिल्म का ये गाना।

और रेडियो SBS की सरिये मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर कुमार की ओर, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम प्रेम नगर, उसी फिल्म का गीत की ओर।

उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनवालो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। इस तार की नंबर पर हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किशोर एनाशा

का गीत प्रोग्राम में पेश की गए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था हिम्मत, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। किशोर कुमार एन आशा भोसले प्रोग्राम में अब की बार ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा।

खुबा रोड आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। दिल में जो बातें है किशोर और आशा के आवाज में खूबसूरत गाना उस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चले अब की बार लता मंगेशकर और किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में फिल्म जुगनू का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। अब की बार मुखी सौराष्ट्र जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते

रंगोली का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में एक पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। अब सुनिए सावन में।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है चाइना टाउन से। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: भुटे मिया लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड अदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जाओ दिल दीवाने
0: Zondag 15 november. Zondag 15 november in Rotterdam, Ahoy, RTM Stage. Twee generaties, één podium. Een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet. En koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events Proudly Presents Baremia Chotemia. Live in concert Udit.

कैसा है चुनाव का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म और जान पिघल के। गजों दो लता मंगेशकर en Amitabh Bachchan was dit prachtig liedje uit Silsila. Gaan we dan verder met uit de film Tiger Zinda Hai, gezongen door Neha Bhasin komt Dil Diya Galla.

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरे हरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तो के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।